गंगा जमुना इचिलना सेंगलबा पाउजिल पुदुना चेलीबी पोक्नफम लमदम इमा जातिगी युम्बिरेल ओइरिबा नपारी नमोम एखोइना अपुम्ब पांगनगा लोइनना ngasigi wakhalda hayengbu ngaidana isai gi leirang loinana wahai gi nachum kachari nakhuya thambalda

ताइबंगी माया पोलुम कोकनबा पुनसी की पोलोई फंगनबा गोविंद सोलू गोपाल हायु हरिबु सक्चौ कृष्ण नाम सोलू इबुंगोगी मिंगलेन सोंजबना अमत ngairaba लंबिनी।

थौरम तारी बस आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चेनेल चेनेल हौजिक लाथोसरी पुफम की थमजरीबा एस एम एस खनर फिल्म इसई लगती इहान हान लौखचरीबा फिल्म अथेंबल फिल्म फिल्म लाइमनाई परमेश्वरी एस एम एस था खनर इसई लाथोगदरी रोसी भी ना सकनी सैरेंब हेमंत सैरंग सगोलसीम तीजेंद्र इसई खुदोल तमजरी तमिनरसी।

0: nungsi manbai film sidagi eje mesna mamadi pusparani anina sakpa dalom gurumayum na sairingba dev sinam na sairang bisai kahan jabagaloina na film sei adomna sms ki khutang da khanbira pasing lan thukse baloi jare akas bani imphal thaujik numidang ki pung tara makhai tare nasigi kangla channel gi ani suba thorum pareng matang sidaloi sinjari haying ayuki pung manga makhai taba matam da channel sigi ahan ba thorum pareng amuk khana sanduk chagani sanduk chagadaba medium web meter sahum ni pudasmik ama kilohertz janipal marifuni thoi matamadu phau budang tabiri be singdagi kaina na ba yathang nijari pina birasi jai hind
1: फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात

10:32 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम हर श्रृंगार आपके साथ, मैं विकास, नमस्कार।

फिल्म का नाम था आरजू और सुधा मल्होत्रा की आवाज थी और संगीत इस फिल्म में था अनिल बिस्वास साहब का। गीत लिखा था हमारे और आपके मशहूर पसंदीदा शायर मजरू सुल्तानपुरी ने। कहते हैं कि सुधा मल्होत्रा जब इस गीत को गा रही थी तो उनकी उम्र काफी छोटी थी, तकरीबन 12 या 14 साल के आसपास की। और देखिए ये गीत 1950 में रिकॉर्ड हुआ और हम आज भी इसे उसी शिद्दत के साथ सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ इस सफर में मैं विकास, और हर सिंगार में मैं और आप खो जाते हैं उस दौर में जिसे हम और आप गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं, और कुछ गीत सुने और अनसुने लेकर आता हूं मैं।

10:42 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप। और रफी साहब और लता जी की आवाज थी और प्यारा सा ड्यूएट था ये फिल्म लैला मजनू से, और ये गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था एक बेहद ही सुलझे हुए लेकिन मुश्किल लेकिन मधुर धुने बनाने वाले जयदेव साहब ने। मदन मोहन साहब का इंतकाल हुआ था इस फिल्म को बनाने के दौरान और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर इस बीच जयदेव साहब की एंट्री हुई और उन्होंने ही इस फिल्म के बाकी के गीत पूरे किए। दिलचस्प सी बात यह भी रही कि काफी अरसे बाद यानी तकरीबन 10 साल के बाद जयदेव और साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के लिए एक साथ काम किया था। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। आपके साथ मैं विकास।

सुधा मल्होत्रा की आवाज पहुंची आप तक। फिल्म का नाम था बाबर और संगीत इस फिल्म में रोशन साहब का, गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने। जब आप इस गीत को सुन रहे थे तो सुनते सुनते मैं भी इस गीत को गुनगुनाने लगा और याद आया कि इस गीत से मिलता जुलता एक और गीत भी तो जहन के किसी ना किसी कोने में मेरे तो बज रहा है। और मुझे लगता है कि शायद संगीत को थोड़ा बहुत फॉलो करने वाले, जानने वाले, पसंद करने वाले बाकी हमारे साथियों के भी जहन में उस गीत की हल्की हल्की सी छवि तो दर्ज हो ही रही होगी। तो क्यों ना उस गीत को भी सुन ले जो कि आरती फिल्म से है। और 1962 की ये फिल्म थी और इसमें संगीत एक बार फिर रोशन साहब का, लेकिन इस बार गीतकार रहे मजरू सुल्तानपुरी। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास।

1959 में एक फिल्म आई, बांग्ला फिल्म रही और फिल्म का नाम था लालू भूलू। जी, यही फिल्म थी जिसका कि हिंदी रीमेक बनकर जब तैयार हुआ तो हमने उसे दोस्ती के नाम से जाना, यानी यही फिल्म पहले बांग्ला में बनकर तैयार रही। फिल्म की कामयाबी की बात करूं तो उसमें संगीत इसका बेहद मजबूत पक्ष रहा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शुरुआती फिल्मों में से एक गिनी जाती है और इसमें रफ़ी साहब और बाकी के सभी कलाकारों ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए। प्रोग्राम का आखिरी गीत अब पहुंचता है आप तक और प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है लव मैरिज। 1959 की ये फिल्म है, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़। छोड़े जाता हूँ आपके साथ और उसके बाद सुनिएगा आप समाचार, लेकिन हाँ, FM गोल्ड के साथ आप बने रहिएगा।

0: स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls issued

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with markets, business or economy. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन शिशिर जी पुनीत जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
0: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान 7-day प्रपोजल टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडियन स्टॉक मार्केट रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक And Wall Street wraps up week with notable gains.
1: अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोले जाने वाले ईरान के 7-दिवसीय प्रस्ताव को खारिज किया भारतीय शेयर बाजार पर लगातार 7वें सप्ताह मंदड़िए हावी और वॉल स्ट्रीट ने बढ़त दर्ज करते हुए सप्ताह का अंत किया

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. U.S. President Donald Trump has shared a map depicting the Strait of Hormuz as Trump Strait after rejecting an Iranian seven-day framework aimed at reopening the strategically vital waterway. According to media reports, Trump reiterated that Iran would not be allowed to acquire a nuclear weapon, expressed doubts over Tehran's willingness to comply with his demands, and warned that the possibility of renewed U.S. military strikes against Iran remained high. Iran had earlier proposed a seven-day process under which hostilities would cease on all fronts. In return, the United States would lift its blockade of Iranian ports, release frozen Iranian funds, and waive oil-related sanctions. The proposals also called for the Strait of Hormuz to be reopened. Very quick comment from Puneet. What do you expect from this turn of events that has taken place where President Donald Trump this time has rejected Iranian proposal and Iran all along has been rejecting U.S. proposal? Where do we stand?
1: So, Rajesh, I think this is well expected, along expected lines, because the proposal from Iran, of course, did not meet the red lines or the major requirements that the U.S. proposal had. So, of course, there is no meeting of minds between Iranian leadership and the U.S. government. And I think that this standoff is continuing. It might accelerate going forward. So I think we are nowhere near a solution as of now.
0: So, Shishit, where do we see ourselves economically going forward? I mean, are things going to improve or are they going to be the way maintain the status quo?
2: I think we are just discussing about that the proposal has been rejected. At the same time, you also have to remember that act which has come into, which has been signed by Donald Trump about imposing 100% tariff. The combination of these two, I mean, if you take this incident and also the 100% tariff imposed by US on, if you are importing anything from Russia, especially I'm talking about the crude oil, that's not going to be a good news for the market because we are seeing a bear run in the market. I mean, I believe that's a seventh consecutive week of
0: correct. That's part of
2: a correction
0: headline
2: in the market. And when you have these kind of reports coming in, so it's not a good news. And at the same time, you also have to remember the Federal Reserve decisions to hike the interest rate. That is also going to have a very negative impact on the market. So the combination of these three, rejection of proposal, then of course the 100% tariff and Federal Reserve decisions to hike the rate. So market is again going to be in a bear phase. I mean, if we talk about the next week opening as well as the next week market thing. And at the same time, we also have to remember that the inflation number in India is also going to be high. So that high frequency economic indicator, if we talk about India per se, that is also not a good news. So that is why I believe that coming 15 days or a month or so will not be so good in terms of Indian economy.
0: We are entering the holiday season, or rather the festival season from October. What do you think? How will the markets take it? How will the economy take it?
2: That's the only good news which are coming because when you have Navratri from 11th of October, of course, we are going to have good purchase, but more purchase will come only in the month of November when we'll have Deepavali. So combination of these two festivals starting from October 11th to for the 9th November, I believe Deepavali is there. So 7th is the Dhanteras. So combination of these three will bring some cheers to the FMCG market, to the electronic market.
0: Hopefully.
2: Hopefully.
3: Yeah.
2: but the only concern at this moment is that the price rise, because many of the companies have indicated that they are going to increase the price. So that may dampen the sentiment. So I may be sounding very pessimist at this moment, but the reality is that the good news are very scarce to find.
0: So Puneet, inflationary trends coming up, as Shishir said, is worrisome.
1: Absolutely, Rajesh. And inflation is technically, it really kills demand. Mm. And that's what we've seen, in fact. If you, while you look at the numbers, the GDP numbers might be slightly higher. But it definitely dampens the mood for consumption. Going forward, like you mentioned, there's going to be festive season. We expect the demand to be better. But I think it will be below what most market expectations were. In fact, one of the first indications was the gold sales in this in the last few days, and we've seen a decline in gold sales because of higher prices. So clearly price is a mood buster as far as demand is concerned.
4: Is beech hamare sath Mumbai se Ratnakar jud gaye hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
5: Hello
4: ji, apna sawal poochiye.
5: Ha, good evening madam. Mera sawal hai ki abhi jo market mein AI related बहुत कॉम्पिटिशन्स नहीं तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपील होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में आदमी का कितना नुकसान नहीं तो फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल एक है कि अभी जो एक आधा स्क्रिप्ट शेयर स्क्रिप्ट आईपीओ की इश्यू होने के बाद जब भी पहले लिस्टिंग होता है, अच्छा कंपनी का समझो लिस्टिंग हो गया, तो वो ग्लोबली रिनाउंड होने के लिए कितना समय लगेगा, और तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो ग्लोबली ऑथेंटिकेट कैसे हो जाएगा?
2: देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि एआई रिलेटेड कंपनीज का, अगर आप बीते सप्ताह का देखें या उसके पहले सप्ताह में देखें, हमने दो तरीके का ट्रेंड देखा. एक बार हमने देखा कि जब जो एआई बेस्ड कंपनीज थी या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एआई को लेकर के जो दुनिया की कंपनियां, उन्होंने कहा था कि उसकी रफ्तार को कम करना है. और उसके पहले ये कहा गया था कि जो एआई कंपनीज हैं उनको अपनी सुविधाएं विकसित करने के लिए आईटी कंपनियों की मदद की जरूरत है. तो इस समय मुझे लगता है कि एआई कंपनी को लेकर के उत्साह रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए. आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये शेयर में लगाने के लिए है, तो आप 10 रुपये या 15 रुपये अगर आप एआई में लगाते हैं और एक कहते हैं ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलें, तो वो बेहतर होगा. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है. दूसरा आपका प्रश्न जो था वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ के बाद जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन होने में कितना समय लगता है. देखिए, ये कोई समय तय नहीं है. एक कंपनी अगर अच्छी है तो उसको वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आईपीओ की जरूरत नहीं होती, उसे अपने प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उसे अपने सामान की जरूरत होती है, अपनी सेवाओं की जरूरत होती है. आईपीओ एक तरीके से निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है. निवेशकों को एक उम्मीद जगह, मतलब निवेशकों के बीच एक उम्मीद ये देता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी. तो दो अलग अलग पहलू हैं और कंपनियां, कई कंपनियां हैं अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में जो कि वैश्विक स्तर पर भी काफी अच्छा नाम कर रही हैं, और वो आईपीओ में भी उनको आए हुए काफी समय हो गया, उनके शेयर प्राइसेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई समय सीमा तय करें कि कितने समय में उनको वैश्विक ख्याति मिलेगी, शायद वो उचित नहीं होगा.
4: बेंगलुरु से हमारे साथ एनआर प्रसाद जुड़ रहे हैं. प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
6: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर. हेलो राजेश जी, हेलो प्रिया जी. मिस्टर सिन्हा, टू क्वेश्चंस.
2: Yeah, please.
6: Sir, this is regarding first is, I think GST Council meet is on 7th October. They're going to discuss this UPI MDR issue plus other processes. Now, from 15th onwards, if it's going to be on MDR, whatever the issue comes out, would it hit the banking sector? This is my first question. Second question is, this PLI, second installment of around 19,000 crore being released or under the process of getting released, which sector can revive because of this in the manufacturing sector? Thank you. These are my two questions.
2: Okay. So what I will do, I will answer the first question, and the second question I will request Mr. Jain to talk about that. So talking about the GST Council meeting, which is scheduled to take place on 7th, and it has already been clarified that the effort and the focus will be entirely on the process reform. Of course, you are, there is a one big issue, which is about the GST on MDR. And see, I mean, if you take the MDR thing, I mean, any transaction which is above rupees 2000, where we are going to have the 0.4% for the normal transaction, then 5 rupees flat fee for insurance premium or railway tickets or for agriculture inputs, and then 0.02 for the stock market transaction. So when somebody is making a transaction, then 18% GST will be charged because this is a financial service. Now the big question was that what will happen to those traders who are not registered and whether they will get the ITC set off or not. So the banks and the others will not be affected in a way because they are going to get the set off. I mean, entire GST outgo for all kind of services, they can also adjust whatsoever GST they have to pay on the MDR. So it's not going to affect the big merchants or the merchants which are the registered one, which are the regular GST SSE. Of course, the composition GST SSE may get sometime affected, but please remember that government has assured that if there is any problem, the proposal can be taken up by the GST Council and some favorable decision is expected. So please wait till 7th. But overall, I think the majority of traders, majority of the businesses which are registered, regular GST SEC, they are not going to be affected by this thing.
0: So Puneet, which sectors, which manufacturing sectors will be affected once the tranche is released?
3: So Rajesh, in fact, the PLI scheme which was launched, and it has really turned out very good results, has so far been focused on incentivizing the manufacturing sector. And the most visible benefits have really gone to the electronic sector, so smartphones and electronic goods. Mm-hmm. And those sectors, and then we had automobiles, which also had a certain tranche of for the solar renewable energy, automobiles and electronics. So mostly these sectors were targeted in the first, you can say, version of PLI scheme. However, now government has expanded that sector, that scheme, the scope of benefits, and the next target, the next sectors that are being targeted, basically include pharmaceuticals, chemicals, and semiconductor sector, because these are the areas where we believe that India will now have the edge, the technological edge, and knowledge edge to forge ahead. And I think that is appropriate because these are the areas where pharmaceuticals, for instance, chemicals, semiconductors, of course, we're trying to make a headway and try to create a place for ourselves. Very, very competitive sectors. I think it is very, very good, very farsighted on part of the government to incentivize these sectors because these are the areas where we can really make a headway. So you look for benefits in pharmaceuticals, chemicals, and semiconductors.
4: आइए श्रोताओं, अब जानें कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार सातवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और कमजोर वैश्विक संकेतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। पांच में से तीन कारोबारी सत्रों में बाजार बढ़त में रहे, लेकिन बृहस्पतिवार को भारी बिकवाली के चलते प्रमुख सूचकांक 1.6% से अधिक फिसले और बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 399 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 73,896 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक यानी 0.9% की गिरावट के साथ 23,141 पर स्थिर हुआ। पिछले सप्ताह में दोनों प्रमुख सूचकांकों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.8% की गिरावट आई। बाजार में उतार चढ़ाव का संकेतक इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान 6.7% बढ़कर 12.16 पर बंद पहुंच गया। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी लगभग 2.5%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.5% और निफ्टी एनर्जी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी रियल्टी 3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और एफएमसीजी सूचकांकों में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 6 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, लगातार सातवें सप्ताह की गिरावट अगर हम देखें, किस दिशा में हमारा बाजार अब रुक करके बैठा है?
1: देखिए, जैसे शिशुल ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि चार फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इनफ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग एफआईआईज ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, और जो एक तांता लगा था आईपीओस का, उसने भी काफी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खास तौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, यूएस बॉन्ड यील्ड, ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहाँ से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहाँ से पुलबैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुलबैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेन्ड बाइंग या सस्टेन्ड अपट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
4: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहता था कि लगातार 2 साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे सर? ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो एफडी जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं जितने।
1: सुभाष जी नमस्कार। आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले 2 वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप 5 वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफी रहे हैं। 9 से 10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूंगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए, ऐसा रहता है। हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती है। लेकिन यदि आप यहां बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्षों से, वर्ष में या उससे ज्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स, उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान न हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहें।

0: to be correct. Moving on, U.S. stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in U.S. Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ composite rose 0.5% each. For the week, NASDAQ rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a three-day summit that showcased personal diplomacy rather than major breakthroughs in economic relations.
1: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं कार्यालयों एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: धन्यवाद। मैं ये दो सवाल है, तो
1: जी अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार। हेलो।
1: हाँ बोलिए, अपना सवाल पूछिए।
2: जैसे कि जीएसटी घटने के बाद कंपनियों ने अब क्या नई ट्रिक अजमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दिए है और वो रेट के रेट वैसे भी इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है, तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से, में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
3: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कंपनी के एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूं जिनके दाम जो है वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में ये है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है, ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है व्हाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, ग्लो रेड गोल्ड की बात की जाती है, तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना धातु की बात करते हैं वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और व्हाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का, जैसे मैं समझ पा रहा हूं आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफी ज्यादा है, और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
0: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड दिस वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स रोज 0.4% टू सेटल एट $104.32 पर बैरल। West Texas Intermediate Crude November futures tanked 3.8% to end at $92.41 per barrel over the week. However, oil prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the US and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the UN General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about U.S. rejecting Iran's seven-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
4: So Rajesh, clearly for India, the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in the international market, we have limit, because we are the world's second largest importer of crude oil. So clearly we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff threat by the US on imports from Russia, I think India has really its task cut out, in a sense, because we need to import energy from Russia, because there is no other large supply of energy like Russia. And therefore, I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious and going forward need to maintain supplies also to see that they are economic in nature.
1: शिशिर, इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीजें हैं जो हर देश को जिसकी जरूरत है, दबाव पड़ता है. ऐसे में किस तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
3: देखिए, दो बातें होती है. एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं
1: जी.
3: और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं. तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज्यादा देना पड़े. हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई, उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर से, अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें. तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं.
1: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं. आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: हेलो, मैम नमस्ते. सर को भी नमस्ते. मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ. सर मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 एज है मेरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन बता पाएगा हमारे को अच्छी मतलब नॉलेज उसके लिए?
3: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाजार ना जाएं. बाजार रातों रात आपको एक, जिसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है. तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतजार करिए, पहले समझिए बाजार को. बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहां पे आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें. अभी के समय में मेरी सलाह है ना जाएं, बेहतर होगा.
1: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा. इसके अंतर्गत ₹2000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा. हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा.
0: Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for a greater adoption of technology and innovation.
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए
3: धन्यवाद.
0: Thank you, gentlemen, for being with us. And before we close the headlines once again, United States rejects Iran's 7-day proposal to reopen Strait of Hormuz. Indian stock markets remains under control of bears for 7th consecutive week, and Wall Street wraps up week with notable gains. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
7: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

स्टूडियो की घड़ी में बता रही है कि 11:42 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आपके साथ मैं विकास, स्वागत आप सबका।

वो शराफत तो दिल के साथ गई, लुट गई कायनात फूलों की। मखदूम मोहिउद्दीन का ये नगमा यानी ये गजल पहुंची आप तक। लता जी की आवाज थी और साथ में थे तलत अजीज। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का झूमने पर मजबूर करने वाला संगीत और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत लता जी की आवाज और रफी साहब के साथ प्रोग्राम का ये आखिरी गीत पहुंचता है आप तक। विकास फिलहाल चाहता है आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान

0: कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े हर फैसले को पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rules issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLO will subsequently upload the documents on the ECI Net platform.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है केदार का तिलक और ये कहानी आपके लिए लिखी है जया आनंद ने। केदारनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिमालय पर्वत की छाओं में ये मंदिर है। रास्ता बहुत ही दुर्गम है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। ये कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई है और ये कत्यूरी शैली में मंदिर बना है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आसपास का जो दृश्य है वो मनोहारी दृश्य है। आपको याद होगा जून 2013 इस दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक बहुत बाढ़ आई थी और बहुत लैंडस्लाइड्स हुए थे। उस समय केदारनाथ मंदिर का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ था उस बाढ़ और भूस्खलन से। कई यात्री उस समय इस तीर्थ के दर्शन को आए हुए थे। ऐसे ही समय पर एक और यात्री जब वहां दर्शन के लिए पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ और वहां पर बसे लोगों के साथ क्या हुआ था, इसी की कहानी है हमारी आज की पानी पर लिखी कहानी, जिसे शब्दों में पिरोया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर जया आनंद ने। आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: अदिति प्रतीक्षारत थी कि कोई घोड़ा कोई खाली कंडिया मिल जाए तो वो भी जल्दी से ऊपर पहुंचे पहाड़ की चोटी पर जहां बैठे हैं केदारनाथ। बारिश बहुत थी और भीड़ भी। इतनी भीड़ देखकर लगा कि क्या आध्यात्मिक मनन चिंतन यहाँ हो सकता है। ईश्वर तो एकांत का स्वरूप है, बुद्धि का विलास वैभव अलग है, पर श्रद्धा भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो अनुभव नितांत अलग है, बौद्धिक विलास से अलग। भक्ति विश्वास को जन्म देती है, जीवन के प्रति आस्था को उपजाती है। केदारनाथ उसी श्रद्धा उसी विश्वास की उपज है। तेज बारिश की बरसती बूंदें कहीं अपने थिरकन से मन को लय पर नाचने के लिए मजबूर कर देती है तो कहीं अस्त व्यस्त बता देती है। यहाँ दूसरी परिस्थिति पर ज्यादा जोर था।
2: रही है, ये सब आज ही होना था। अब कैसे जाना होगा, कैसे दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के। और देखो ना, यहाँ कोई साधन भी नहीं दिखाई दे रहा।
3: हाँ, लगता है केदारनाथ हमारी परीक्षा दे रहे हैं।
2: अगर ये बात है तो मुझे विश्वास है हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। अब चाहे बारिश हो या कुछ भी, हम दर्शन करके रहेंगे।
3: देखो अदिति, बारिश बहुत है और हेलीकॉप्टर बंद होने की वजह से भीड़ भी बहुत बढ़ गई है। अम्मा पिताजी बच्चे कंडिया में जा चुके हैं और मैं तो घोड़े पर भी जा सकता हूँ। ऐसा करो, तुम भी घोड़े पर मेरे साथ चलो।
2: नहीं नहीं, घोड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो?
3: घोड़े पर नहीं तो कंडिया में बैठ जाओ।
1: तभी एक गोरा लंबा मुस्कुराता हुआ पहाड़ी चेहरा सामने आकर खड़ा हो गया।
3: अरे बेटा, चलोगे कंडिया में लेकर?
4: हाँ भैया, ले चलूंगा। दीदी, कंडिया में बैठोगी? बैठो ना दीदी, साहब ये देखो हमारी कंडिया भी मजबूत है।
3: अरे बेटा, वो तो ठीक है, पर तुम्हारी दीदी माने तब ना। देखो अदिति, जिद मत करो, बैठ जाओ कंडिया में।
2: हाँ कंडिया, पर नहिल, क्या मैं बैठ पाऊंगी?
3: क्यों नहीं, आओ।
4: हाँ दीदी, मैं संभाल के ले जाऊंगा आपको।
2: तो ठीक है,
3: हाथ देना तो।
2: हाँ
3: ठीक है ना, कंफर्टेबल?
2: अभी ठीक है।
4: देखो दीदी, आप भीगोगी भी नहीं।
2: ये अंदर पानी आ रहा है, इसका क्या करोगे?
4: ऐसे देखो, मैं पॉलिथीन लगा देता हूँ दीदी।
2: ये ठीक रहेगा।
4: ठीक है ना दीदी?
2: अब ठीक है, और देखो जरा संभल कर चलना, कहीं गिरा विरा मत देना मुझे।
4: ठीक है दीदी, चलो तो फिर मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे।

0: अदिति कंडिया में बैठ तो गई, पर प्रकृति का आनंद उस कंडिया के अंदर सिमट कर रह गया। कंडिया में बैठे बैठे अदिति सोचने लगी,
1: हे भगवान, इतना कष्ट उठाकर दर्शन, भगवान आप भी कहां कहां डेरा जमा कर बैठ जाते हैं, और हम भी तो दर्शन के लिए थोड़े थोड़े चले आते हैं, मानो सारा का सारा पुण्य इसी में मिलेगा।
0: अदिति के मन में विचारों की लहरें उठा पटक कर रही थी। 20 साल पहले भी अदिति केदारनाथ आई थी, 12वीं में रही होगी, जोश था तब इसने पैदल की ही चढ़ाई की थी। रामबाड़ा तक रास्ता तो पता ही नहीं चला, लेकिन उसके बाद यात्रा अत्यंत कठिन हो चली थी, और तब भी यही प्रश्न उभरा था, भगवान इतना ऊपर जाकर क्यों बैठ गए। उस समय भी वो बारिश में गिर गई थी, अपनों से बिछड़ गई थी, और तब हाथों की उंगलियों में सूजन भी आ गई थी। केदारनाथ के एक दो चाय वाले लड़कों ने हाथ में तेल लगाते हुए कहा भी था, केदार बाबा सब ठीक करेंगे। उनकी सेवा परायणता निश्चलता देखकर अदिति की आंखें छलछला गई थी। उनकी केदारनाथ के प्रति आस्था अदिति को भी विश्वास से भर रही थी।
2: दीदी एक बात कहूँ?
1: हाँ बोलो ना।
2: आप बहुत भारी हो।
1: तो तुम क्या चाहते हो, मैं नीचे उतर जाऊँ?
2: थोड़ी देर के लिए।
1: लगता है तुम थक गए हो, चलो मुझे नीचे उतार दो थोड़ी देर के लिए।
2: गाओ दीदी, अपना पर्स दे दो।
1: नहीं नहीं, चल सकती
2: हूँ। नहीं नहीं दीदी, हमें तो आदत है पर सामान के साथ लोगों को कंधिया में बिठा कर चलने, पर आपको थोड़ी परेशानी होगी।
1: नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
2: दीदी जानती हो मैं तो यहाँ हर साल आता हूँ, केदार बाबा का दर्शन भी होता है और खूब कमाई भी।
1: अच्छा ये बताओ तुम रहने वाले कहाँ के हो?
2: जी दीदी मैं यही गढ़वाल का ही रहने वाला हूँ।
1: और तुम्हारे घर में कौन कौन है?
2: दादी माँ पापा और एक बहन।
1: पढ़ाई नहीं करते तुम?
2: दीदी 12वीं की परीक्षा दी है पर कमाई भी करनी है, पिछले साल 50,000 की कमाई की थी। दीदी अब की ना मैं कमाई करके घर जाऊंगा तो पुलिस में भर्ती होऊंगा।
1: क्या बात है। सुनो मैं थोड़ा थक गई हूँ, एक काम करते हैं, देखो वो चाय की दुकान है ना, चलो वहीं थोड़ा रुक कर चाय पीते हैं, ठीक है?
0: हाँ। अदिति थक गई थी, एक चाय वाले के पास बैठकर सुस्ताने लगी। वहीं बच्चे भी मिल गए जो आगे की कंडिया में थे, और परिवार के अन्य सदस्य भी। बारिश अभी भी मध्यम मध्यम हो रही थी, ऐसे में गरम चाय ने मानो जान डाल दी। अदिति ने बाकी कंडिया वालों को भी चाय पिला दी। चाय पीते पीते अदिति ने अपनी कंडिया वाले लड़के का चेहरा देखा, गोरा, छोटी छोटी आंखें, सौम्य सहज मुस्कान और कद काठी वो लंबी। चाय पीते पीते अदिति ने पूछा,
1: अच्छा सुनो तुम्हारा नाम क्या है?
2: तिलक है दीदी।
1: बहुत सुंदर नाम, केदार का तिलक।
0: अपनी सौम्य निश्चल मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा। केदार की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के उत्तुंग शिखर के माथे पर लगा हुआ मानो कोई तिलक अपनी दिव्यता और पवित्रता के साथ, जहाँ अकेले चलने भर से पैर थकने लगते हैं, हम हांफने लगते हैं, वहीं

0: जैसे लोग लोगों को पीठ पर बिठाकर लाद कर सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के साथ केदारनाथ के दर्शन करवाते हैं। सच पूछो तो असली पुण्य के अधिकारी तो यही हैं। चाय पीने के बाद अतिथि, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य कंडिया पर सवार होकर चल पड़े।
1: अच्छा तिलक, ये बताओ, मैं अब भारी तो नहीं लग रही ना तुम्हें?
2: दीदी, आप भारी तो
1: अच्छा तो आसपास में जितनी भी कंडिया जा रही है उनमें क्या पतले पतले लोग बैठे हैं? कितनी कितनी जबरदस्त ठंड है ना, और केदारनाथ में रहने के लिए कितनी सारी धर्मशालाएं बन गई हैं, और अब तो जहाँ देखो वहाँ दुकानें भी दिखाई देती है।
2: हाँ दीदी,
1: पहले से बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। बहुत पहले आई थी मैं यहाँ पर, लगभग 12 साल पहले।
2: जी दीदी।
1: और मुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। विश्वास मनुष्य को हर कष्ट से लड़ने की क्षमता देता है।
2: दीदी देखो केदारनाथ आ गए। दीदी केदार बाबा के दर्शन अच्छे से करना। मैं तो लगभग रोज आता हूँ।
1: अरे वाह, तुम रोज आते हो?
2: जी दीदी।

रात को ही नेहिल, बच्चे, उसके माता पिता, सास आदि सबके साथ उसने केदारनाथ के दर्शन किए। मन अभिभूत हो गया। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा केदारनाथ का मंदिर अलौकिकता का निदर्शन कर रहा था। सच, ईश्वर साधारण आंखों से नहीं दिखता,

सहजता से भरी दृष्टि चाहिए, जैसे उस तिलक की छोटी छोटी आंखों में दिखाई पड़ती। केदारनाथ में बहुत भीड़ दिख रही थी, इतनी पहले नहीं हुआ करती थी। वहाँ कई दुकानें खुल गई थी।

केदारनाथ मंदिर को चढ़ती सीढ़ियाँ, ऊपर विशाल नंदी की प्रतिमा, फिर अंदर गर्भगृह से केदारनाथ का लिंग। रात्रि में केदारनाथ पूर्णतः सुसज्जित थे। अदिति ने सपरिवार दर्शन किया और फिर वापस धर्मशाला के

0: सेवकों ने गर्मा गर्म खाना खिलाया। कच्चे खाने में संभव था उनका अपार स्नेह मिश्रित था, इसलिए खाना सबको बहुत स्वादिष्ट लगा। तिलक भी वहां रुका था।
1: ओहो, आज अचानक तेज बारिश कैसे शुरू हो गई?
2: भैया, बल मुंबई के फैशन और केदारनाथ के मौसम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता।
0: रात भर सांस लेने में सभी को कठिनाई होती रही। कपूर सूंघ सूंघ कर सभी रात में सोने की कोशिश करते रहे। सुबह आसमान साफ था, बर्फ से ढकी श्वेत उज्जवल पहाड़ियां, ऊपर झांकता हुआ नीला आसमान और सबके बीच केदारनाथ का मंदिर। आंखों के आगे दृश्य मानो अदिति भर लेना चाहती थी। पिछली बार केदारनाथ के पीछे की बर्फ से आच्छादित पहाड़ियां सूर्य की किरणों से सुनहरी सी दिख रही थी। उसने उस दृश्य को भी अपनी आंखों में कैद कर लिया और आज ये दृश्य, तिलक की बात भी याद आ गई कि मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम कुछ कहा नहीं जा सकता। चाय पीकर और पवन स्नान करके, क्योंकि पानी से नहाने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं, सब अपनी अपनी कंडिया में बैठकर सवार होकर चल पड़े। सूर्य की किरणों ने थोड़ी राहत दी। नेहिल और अदिति के पिता घोड़े पर थे, उसके बच्चे माँ सासू माँ धूप के कारण थोड़ा अच्छा अनुभव कर रहे थे।
2: दीदी आओ बैठो।
3: भारी तो नहीं लगूंगी ना तुम्हें?
2: दीदी आप भारी तो।
0: अदिति का चेहरा हल्के गुस्से से भर गया। आखिर वो एक स्त्री है और उसके सामने कोई बेखौफ उसकी बुराई करे। खैर, वो कंडिया में बैठ गई। ऊपर स्वच्छ भरपूर नीला आकाश, बीच बीच में धवल बादल, पहाड़, ऊपर हरे भरे पेड़ और उनके बीच में हिमाच्छादित एक चोटी और उस पर पड़ती सूर्य की किरणें, अद्भुत अद्भुत अवर्णनीय दृश्य। प्रकृति की छटा अदिति को मंत्रमुग्ध किए हुए थी। थोड़ा ही चले चल हुए थे कि उसको लगा कि वो तिलक को भारी लग रही होगी और वो पहाड़ के पैदल तो बिना किसी कठिनाई के उतर ही सकती है।
3: तिलक, अच्छा सुनो तू।
2: हाँ दीदी।
3: तुम मुझे उतार दो, मैं पैदल ही चलूंगी।
2: अरे नहीं दीदी, मैं आराम से आपको लिए हुए।
3: अरे नहीं नहीं, उतार दो मुझे। हाँ अभी ठीक है।
2: अच्छा दीदी, अपना बैग दे दो मुझे।
3: ये लो, संभाल के रखना, है ना?
2: जी दीदी।
0: तिलक ने अपनी सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अदिति ने इस बार बेझिझक अपना बैग तिलक को दे दिया, क्योंकि इस बार विश्वास के बंधन ने उसे बांध दिया था।
2: दीदी, यहाँ केदार बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
3: अच्छा,
2: सबका घर परिवार केदार बाबा के आशीर्वाद से ही चलता है दीदी। मैं तो यहाँ हर बार आता हूँ।
3: अच्छा तिलक, पढ़ाई भी करा करो। क्या?
2: पढ़ता हूँ ना दीदी। यहाँ से 1-1.5 महीने काम करता हूँ, फिर जाके पढ़ता हूँ। अब बैठ जाओ दीदी, मैं जल्दी से आपको पहुँचा दूंगा।
0: कंडिया में बैठते ही अदिति की पलकें झुकने लगी। आगे पीछे उसके प्यारे प्यारे बच्चे और माँ और सासू माँ भी थे। उसको नींद आ गई। जब आँख खुली तो नीचे गौरीकुंड में थी।
2: दीदी उतरो, आ गया गौरीकुंड।
3: अरे हम पहुँच गए तिलक।
2: जी दीदी।
3: मुझे नीचे उतार दो।
2: जी दीदी।
0: अदिति कसमसाते हुए कंडिया से उतरी और तिलक को पैसे पकड़ाए।
2: दीदी फिर से आना।
3: हाँ तिलक, जरूर आऊंगी। और तुम पढ़ाई करना, ठीक है ना?
2: जी दीदी।
0: अदिति का मन किया तिलक की फोटो खींच ले, पर सोचती ही रह गई। लेकिन तिलक की जो छवि उसकी आंखों में बस गई थी, वो किसी भी फोटो से अधिक सजीव और जीवंत थी। तिलक अपनी कंडिया पीठ पर लाद कर हंसता मुस्कुराता अपनी धुन में मस्त अपनी राह हो चला। अदिति के मन में आया, जोर से चिल्लाए, ए तिलक, पर वो आवाज उसके भी भीतर ही सिमट कर रह गई। अदिति और उसका परिवार अब बद्रीनाथ का दर्शन कर कृतार्थ हो गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर चले। रास्ते में ही उनको पता चला कि केदारनाथ में भयंकर तबाही हो गई है। अभी वो घर पहुंचे ही नहीं थे कि रास्ते में चाय की दुकान पर टीवी पर केदारनाथ रास्ते की भयंकर तस्वीरें देखकर वो दोनों हिल से गए।
3: वो नीहिर सही जा हुआ सब बिखर गया। एक स्तब्धता शून्यता से मेरा दिलो दिमाग भर गया है नीहिर।
1: हे भगवान, ये केदारनाथ में तो भयंकर तबाही मची हुई है। केदारनाथ जी के मंदिर को छोड़कर सब आसपास के घर मकान पानी में गिरते जा रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो गया है। अभी एक दिन पहले तो हम वहीं थे, केदारनाथ जी का दर्शन, वो धर्मशाला, रामबाड़ा की चाय, गौरीकुंड का स्नान
3: और वो केदारनाथ की चप्पल की दुकान जहाँ से हमने बेटी के लिए चप्पल खरीदी थी,
1: और अदिति वो मिठाई वाला जहाँ सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबियाँ खाई थी। ओह, सब ध्वस्त, कुछ भी नहीं बचा।
3: ये कैसा मंजर है, हजारों लोग मर गए, कोई पानी के बहाव के साथ बह गया तो कोई बिना माँ का, तो किसी का बच्चा नहीं।
1: कितने ही लोग आपदा में फंसकर भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं।
3: नीहिर, अगर हम वहाँ होते तो?
1: हे ईश्वर, ऐसा तांडव क्यों? हम पर तो कृपा की, पर जो इस त्रासदी में फंस गए मर गए उन्हें बढ़कर तुमने क्यों नहीं बचाया? वे भी तो तुम्हारे दर्शन को गए थे। हे प्रभु केदारनाथ, तुम वहाँ बैठे बैठे ये दर्दनाक नजारा कैसे देखते रह गए?
3: वो देखो नहिल, केदारनाथ के आगे जो विशाल नंदी की प्रतिमा थी, देखो देखो नहिल, वो धसकर आधी रह गई है।
1: और वो गौरीकुंड का रास्ता, अदिति इसी रास्ते से हम पहुंचे थे गौरीकुंड, जहाँ घोड़े और कंडिया वाले रहते थे, वहाँ तो केवल एक गड्ढा बचा हुआ है।
3: आखिर इतनी कठिनाई से सब ऊपर चढ़कर आपके दर्शन के लिए गए और आप उन्हें बचा भी ना सके, बढ़कर आपने हाथों से उन्हें थाम क्यों नहीं लिया? हे भगवान, सुनो, तिलक बचा होगा ना, वो तो हर साल केदारनाथ जाता है।
1: अदिति, केदारनाथ का आशीर्वाद और सैकड़ों लोगों की दुआएं उसके साथ है। केदारनाथ की इस भयंकर त्रासदी में लोगों को बचाने के लिए सेना के अनेक जवान भी तो हैं। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वो जरूर बच गया होगा।
3: नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे ईश्वर, क्यों किया तुमने, क्यों किया, आखिर क्यों भगवान? हे भगवान, तिलक जहां भी हो ठीक हो।
0: ये कहकर अदिति की आंखें भर आई और उसकी दृष्टि आसमान की ओर टिक गई, कुछ ढूंढने की कोशिश में। इस त्रासदी के पीछे अनेक कारण सामने आने लगे। आवश्यकता से अधिक लोगों का केदारनाथ में होना, अधिक इमारतों का बनना, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, और इन सब ने प्रकृति को असंतुलित कर दिया, और उन्हीं सब का दुष्परिणाम था केदारनाथ की हृदय विदारक त्रासदी। इस घटना को एक साल बीत गया। अदिति ने केदारनाथ की यात्रा को सहेजते हुए बिखरे घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। नेहिल अपने ऑफिस के चक्कर में घिर गए और अदिति का कॉलेज भी खुल गया, बच्चों के स्कूल शुरू हो गए, सब कुछ नियमित दिनचर्या में सिमट गया। इस बीच कभी कभी उसके दिमाग में केदारनाथ की कठोर यात्रा और तिलक का चेहरा यादों के झरोखों से झांक जाते। दीदी, आप बहुत भारी हो।
1: अदिति, अदिति देखो जल्दी आओ, केदारनाथ की न्यूज है टीवी पर।
3: क्या हुआ? अभी आ रही हूँ। अरे हुआ क्या है?
1: देखो केदारनाथ की खबर है। केदारनाथ पूरी तरह से सज धज के तैयार है।
3: अरे
1: कितना सुंदर फूलों से सजाया है मंदिर को।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: उस त्रासदी में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था और शेष रहा था आस्था का प्रतीक केदारनाथ। हजारों तीर्थयात्री अब तैयार हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए। इस बार उन्हें एक साथ हजार हजार के ग्रुप में भेजा जा रहा है।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन न बिगड़े, नहीं तो यूं ही प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है।
3: बिल्कुल सही कहा नहीं। आध्यात्मिकता जीवन में बहुत जरूरी है, पर उसमें विज्ञान का समन्वय होना भी तो चाहिए ना।
1: हाँ, इन दोनों के समन्वय से ही आस्था का जन्म होता है और आस्था से जीवन का
3: जी।
1: इसलिए पिछले वर्ष मृत्यु का तांडव देखने के बाद भी हजारों लोग केदार बाबा के दर्शन के लिए तत्पर हैं, अपार जीवन शक्ति और ऊर्जा के साथ।
3: ये सब देखकर मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है। नहीं, तिलक भी जरूर कहीं ना कहीं ठीक होगा। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है।
2: दीदी, आप बहुत भारी हो। केदारनाथ के दर्शन अच्छे से करना।
4: भागती दौड़ती जिंदगी में समय अबाध गति से आगे बढ़ता है। केदारनाथ की त्रासदी को लगभग 5 साल बीत गए हैं। नेहिल को ऑफिस के काम के सिलसिले में जम्मू जाना था।
1: सुनो अदिति, ऑफिशियल टूर है, जम्मू जाना होगा।
3: नेहिल, मैं भी चलूंगी। इसी बहाने वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लूंगी।
1: ठीक है।
3: और सुनो, बच्चों को यही दादी के पास रहने देते हैं। उनके स्कूल खुले हैं तो बस हम दोनों चलेंगे।
1: ओके, तो सामान पैक कर लो, इसी संडे निकलना है जम्मू के लिए।
3: ये ठीक रहेगा, मैं अभी तैयारी करती हूँ।
4: फ्लाइट समय से थी। नेहिल और अदिति कुछ ही घंटों में जम्मू पहुँच गए। अगली सुबह वो कटरा जाने की बस में सवार हो गए। कुछ घंटों में कटरा आ गया। सभी यात्री उतरने लगे। नेहिल अदिति को सामान के साथ वहीं कटरा चौराहे पर एक चाय की दुकान के पास खड़ा करके होटल बुक कराने चले गए। अदिति वहीं खड़े होकर सारा नजारा देख ही रही थी कि उसे कुछ दूरी पर एक बेंच दिखाई पड़ा। वो भी थक गई थी। उसने अपना एक बैग उठाया। अदिति ने दूसरा बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था तो किसी ने पहले से ही वो बैग अपने हाथों में ले लिया। अदिति चौंकी तो देखा सामने एक लंबा मुस्कुराता हुआ फौजी खड़ा था।
2: रुकिए, मैं सामान लेता हूँ।
3: अरे अरे, आप रहने दीजिए, मैं अपना बैग उठा लूंगी।
2: अरे दीदी, मैं हूँ ना, उठाने के लिए सामान। कहाँ रखना है मुझे बताइए।
3: आप मत उठाइए, मैंने कहा ना आपसे, मैं अपना बैग उठा लूंगी। और भला आप क्यों उठाएंगे मेरा सामान?
2: दीदी पहचाना?
3: अरे अरे तिलक, अरे तिलक।
2: हाँ दीदी, मैं तिलक।
3: तिलक, तुम्हें नहीं पता तिलक, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तिलक। तुम जिंदा हो तिलक। तुम
2: जी दीदी,
3: तुम यहाँ पर कैसे आए तिलक?
2: जिस दिन केदारनाथ में तबाही मची उस दिन मैं गौरी कुंड में ही था। सब कुछ तबाह हो गया दीदी, कितना लोग मारा गया कुछ पता नहीं चला, कितना आदमी इधर उधर हो गया वो भी कुछ पता नहीं चला।
3: तिलक, केदारनाथ से आते समय हमने रास्ते में टीवी पर देखा, कितना भयंकर दिन था वो। तुम्हें डर नहीं लगा तिलक?
2: बहुत डर लगा दीदी, ऐसा लगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। दीदी, मैं सेना की मदद से किसी तरह देहरादून आ गया, वही प्रेम नगर के एक कर्नल के यहाँ नौकरी करने लगा। दीदी, आप बोलते थे ना पढ़ाई करो, तो मैं वहाँ पढ़ाई भी करता रहा। फिर केदार बाबा, कर्नल साहब और आप सब के आशीर्वाद से फौज में भर्ती हो गया।
3: सच तिलक, केदार बाबा की तुम पर असीम कृपा है तिलक। मुझे बहुत खुशी है तिलक, तुमने मुझे इतने सालों के बाद कैसे पहचाना तिलक?
2: दीदी, आपकी वो बड़ी बड़ी आंखें और आप ज्यादा बदली भी नहीं, जैसी हो वैसी ही हो। हाँ, थोड़ा भारी हो गए हो ज्यादा।
3: तिलक, तुम बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा, तुम यहाँ पर आए कैसे? जम्मू में तुम क्या कर रहे हो?
2: दीदी, जम्मू में मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, तो सोचा कि ट्रेनिंग के बाद वैष्णो माता के दर्शन कर लूँ। मैं तो कर आया दर्शन, और आज ही दोपहर को वापस जा रहा हूँ अमरनाथ।
3: अच्छा,
2: मेरी पोस्टिंग वहीं हो गई है।
3: अरे वाह,
2: आप आइएगा दोनों।
3: हाँ हाँ तिलक, हम जरूर आएंगे। अच्छा तिलक, ये बताओ तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं?
2: नहीं नहीं नहीं दीदी, अभी सगाई हुई है, मेरे गांव की ही लड़की है।
3: ओ, अच्छा, फोटो वोटो है तुम्हारे पास? है तो दिखाओ ना, अपनी दीदी को दिखाओ।
2: हाँ हाँ, ये देखो दीदी, अच्छी है पर थोड़ी भारी है।
3: तुम्हें तो हर कोई लड़की भारी लगती है, अब क्या उसे खंडिया में बिठाया था तुमने?
2: नहीं दीदी, अभी कैसे, वो तो देखने से ही लगता है।
3: वो देखो निहिल आ गए। निहिल, पहचाना इसे? तिलक, केदार का तिलक।
1: अरे वाह, तिलक कंडिया वाला। फौज में भर्ती हो गए? बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, वाह वाह।
2: हाँ भैया, अब मेरी पोस्टिंग अमरनाथ में होने वाली है, आप सब आइए।
1: हाँ हाँ जरूर, वहाँ पर। अरे भाई, केदारनाथ जैसी त्रासदी तो नहीं होगी वहाँ?
2: नहीं भैया, सरकार ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, थोड़े थोड़े लोगों को भेजते हैं, और अमरनाथ में पेड़ पौधों को संभाल कर रखा गया है, सेना भी तैयार है मदद के लिए।
1: वाह भाई वाह, जरूर आएंगे हम तो।
3: और निहिल, अब तो हमारा तिलक फौजी बन गया है। तिलक यूं ही सहज भाव से बोलता जा रहा था। अदिति तिलक की इस सौम्यता और सहजता की प्रशंसक थी, जहाँ ना कोई बनावटीपन था ना ही कोई कृत्रिमता। पहाड़ों से गिरते हुए स्वच्छ धवन निर्मल झरने की तरह था तिलक। मन के तार किस तरह से जुड़े होते हैं, इसकी अनुभूति को अदिति साक्षात अनुभव कर रही थी। अदिति का विश्वास रंग लाया था, केदार का तिलक था और रहेगा।

तो अभी आपने सुनी ये कहानी केदार का तिलक, जिसे आपके लिए लिखा था लेखिका जया आनंद ने। ये कहानी जैसा कि आपने सुनी उस समय की घटना पर आधारित थी, जबकि केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ और बहुत भूस्खलन हुआ। उस समय की ये घटना थी दोस्तों, जो कि वाकई हमारे भी दिल को छू गई। इस कहानी से हमें ये जो संदेश मिलता है वो ये है कि प्रकृति अपने निर्णय स्वयं लेती है, हम खुद इस प्रकृति के एक अंग मात्र हैं। जब हम खुद अपने आप को नियंता मान बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जरूर प्रभावित होता है। हमें ये मानकर चलना है कि जीना है तो साक्षी भाव से। ये पर्यावरण, ये प्रकृति सभी के लिए है। जीव जंतु जितने भी तत्व हैं इसी के साये तले जीते हैं। जितना भी कोशिश हो, पहाड़ों को बचाना है, नदियों को बचाना है, प्लास्टिक से उचित दूरी बनानी है, ताकि प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे और हमारी ये खूबसूरत प्रकृति हमेशा और भी खूबसूरत बनी रहे। यही संदेश था आज की कहानी का। और हाँ, एक संदेश और भी था, हम सबसे ऊपर भी एक ऐसी शक्ति है, प्रकृति की शक्ति, जो कि हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। मनुष्य तो इसका एक अंग मात्र है। बस इसी को अंगीकार करते हुए ये कहानी थी। इसी संदेश के साथ हम समेटते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।

0: सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूरदराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से संघर्ष विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग से जुड़े क्षेत्रीय समझौते की शर्तों को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने गुरुवार को कहा था कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए 7 दिन की योजना पेश की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की च्यू पिनचियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for restraint and de-escalation in ongoing conflicts. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jaishankar remarked that hostilities continue to destabilize global security and development progress, leaving countries distant from battle zones exposed to their fallout. Emphasizing the broader global reverberations of armed conflict, Mr. Jaishankar stated that countries far from conflicts are being penalized for no fault of theirs. He also called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11:08। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम सुनते हैं ऐसे सदाबहार गीत जो हमारी स्मृतियों में, हमारे यादों में अब भी जिंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ के साथ।

इस मधुर चांदनी में और इस सदाबहार मौसम में मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ ही, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अगर गाने की हम बात करें तो अभी जो गीत आप सुन रहे थे वो था फिल्म चोरी चोरी से, आवाज़ थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1956 में और ये एक लव स्टोरी थी जिसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर और नरगिस ने। चरित्र अभिनेता का अभिनय किया था भगवान दादा, प्राण, डेविड और जॉनी वॉकर ने। ऐसा कहा जाता है कि 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं इसी फिल्म की कहानी पर आधारित थी।

जब मधुर चांदनी हो तो सितारों का जमीन पर मिलन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गीत आप सुन रहे थे, ये सदाबहार गीत आपने सुना फिल्म कोहिनूर से, और आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, संगीत नौशाद का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने और निर्देशन किया था एसयू सनी ने। फिल्म में दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनिस और कुमकुम ने अभिनय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और 1960 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। गीत अगला आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

0: कसम
1: मोहब्बत की कसम।
2: जब मोहब्बत का ऐलान सरेआम हो ही चुका है तो फिर डर कैसा, पर्दा कैसा। अब बारी है मोहब्बत को इस महफिल में अंजाम देने की, आजमाने की। गीत की अगर बात करें तो आप सुन रहे थे ये गीत दिल तेरा दीवाना फिल्म से, और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की, संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शम्मी कपूर, माला सिन्हा, महमूद।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदारजी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए। मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सब पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल गए हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

107.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:43 और 15 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

ये बेहद खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में, और संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म 1962 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अलवी ने, निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने, और इस फिल्म में अभिनय किया था गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान और वहीदा रहमान ने। ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म साहेब बीबी और गुलाम फिल्म की रीमेक थी, और ये फिल्म बिमल मित्रा के उपन्यास साहेब बीबी और गुलाम पर आधारित भी थी। अगला गीत फिल्म बरसात की रात से आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा

0: मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंद मई के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में मदद की है और आपदा तथा संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता भी पहुंचाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल शेयर हिज थॉट्स विद द पीपल ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड इन हिज मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। इट विल बी द 138th एपिसोड। The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that India would exercise its right to defend itself against terrorism, accusing an unnamed country of misrepresenting facts at the UN General Assembly a day earlier. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jayashankar called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order. He said governments engaged in such practices must be held accountable and the financing of terrorism must be exposed and countered.
3: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
2: The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम। आता भी किसको है ऐसा जादू वादू करना, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है मेरा तन, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है मेरा तन और महक उठती है मेरे मन की मौलश्री। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और आशा जी की आवाज़ के साथ।

प्यार की गलियों में अकेले अच्छा नहीं लगता है ना, क्या फायदा मैं निकलूं और आप ना हो। जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के 700.1 MHz पर, फिर चलेंगे साथ साथ प्यार की गलियों में, रात के परों पर बैठकर, और मिलेंगे चांद से।

मुझे तो इन भीगी भीगी रातों में ऐसा लगता है कि हम सभी बातों की लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं, जहां पर हमारे साथ चांद हो, तारे हो, रात हो और हो बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। पर फिर याद आता है कि मैं तो स्टूडियो में हूँ और समय से और गानों से और चीज़ों से बंधी हुई हूँ, तो क्यों ना आपको बातों की लॉन्ग ड्राइव पर यहाँ स्टूडियो से सीधे एक लंबी यात्रा करवाई जाए। अगला गीत आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने कहा है ना कि वादा जब हम करते हैं तो उसे निभाते ज़रूर है। अगला गीत आप ही के लिए।

देखिए, ये दुनिया वाले तो जरूर कहते हैं कि वादे तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन हम यानी आपके जो रेडियो साथी हैं, ये कोई वादा नहीं तोड़ते, बल्कि हर पल आपका साथ निभाते हैं। वादा हर रोज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का, वादा आपको खूबसूरत गीत सुनवाने का। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भी किसी खास इंसान से कोई ना कोई वादा जरूर किया होगा, या किसी ने आपसे किया होगा। जो भी हो, आज का मौसम ये गवाही जरूर दे रहा है कि दिल के रिश्तों में वादों की मिठास रहनी चाहिए, चाहे रिश्ता रहे या ना रहे। अगला गीत अभी के लिए।

फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात ज़रूरी समझी। एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 23 सेकंड। आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

वैसे प्यार का ये वाला रंग कितना खूबसूरत होता है ना, जहाँ लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, निगाह उठती है, आंखें शर्माती हैं और प्यार का इजहार हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये इजहार ज़्यादा, जबान से ज़्यादा दिल तक सफ़र तय करता है, ये दिल पर ज़्यादा असर करता है। और अगर इस वक्त आपका दिल भी किसी के लिए तेज़ी से धड़क रहा है और आंखों के सामने कोई हसीन चेहरा घूम रहा है, तो फिर ये अगला गीत आप ही के लिए।

0: ये सच बात है कि वक्त बीत जाता है, जमाने बदल जाते हैं, लेकिन साहिर साहब के लिखे हुए ये लफ्ज आज भी दिल और दिमाग पर उतना ही असर डालते हैं जितना जब डालते थे जब ये लिखे गए थे। इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शायर जो है वो समय को लांग जाता है, शायर शब्दों को लांग जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।
1: ओ सोनिए मां छुट्टिया

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से 3 बजे होंगे समाचार और 3:10 पर हम राही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगे रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के

कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी में AI को भी शामिल करेगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 3:11:21। ये समय और इस वक्त आपके साथ हूं मैं, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आपका पसंदीदा हमराही। हमराही में आज हम सुनेंगे कुछ ऐसे युगल गीतों को जो हमें फिर से उस मोहब्बत की दुनिया में ले जाएंगे, जहां हम और आप एक बार फिर से खो जाने को तैयार हैं। दिल और सांसों पर अधिकार जब तुम्हारा हो गया, दिल और सांसों पर अधिकार जब तुम्हारा हो गया, सूना पड़ा ये जीवन फिर से हमारा हो गया। तुम मिले तो थम गई धड़कन की सारी उलझने, बेफिक्र बहती कश्ती को किनारा हो गया।

जब हमारे दिल पर किसी का अधिकार हो जाता है तो हम अपने दिल को चाहे जितनी मर्जी जोर लगा दें, हम अपने आप को उनकी यादों से कभी भी दूर नहीं जा सकते।

वैसे दोस्तों, दिल और मोहब्बत, सच्चे प्रेम का समर्पण, गहरा विश्वास और सुरक्षा का एहसास है। जब जीवन में सही जीवन साथी का साथ मिलता है तो इंसान की भावनाएं बिल्कुल बदल जाती हैं। जीने का नजरिया बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। आप क्या कहते हैं? शायद आप सहमत होंगे हमारी बात से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां आप है हमराही में मेरे साथ यानी अपनी दोस्त रूपा के साथ। और वक्त बता दें आपको, जी हाँ, हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है 3:34 और 47 सेकेंड। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं दिल और मोहब्बत की। मोहब्बत को अलग अलग रंगों से देखा जा सकता है। जी हाँ, प्यार में मीठी नोक झोंक, तड़प की चुलबुलाहट तो होती ही है, और वहीं से प्यार की शुरुआत का बेहद खूबसूरत दौर शुरू होता है।

मुलाकात के वक्त जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब नजरें और खामोशी बातें करती हैं। दिल की दास्तान का सबसे हसीन पल वही होता है जब बिना कहे सब समझ में आ जाता है। ना जाने कौन सी अनकही दास्तान छुपाए बैठा है हर दिल, ना जाने कौन सी अनकही दास्तान छुपाए बैठा है हर दिल। बाहर से खामोश सही, अंदर एक पूरा शहर बसाए बैठा है।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे बयां करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं। ये महज दो लोगों का जुड़ाव नहीं बल्कि रूह का रूह से रिश्ता है। वैसे मोहब्बत को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता है, पर हम अभी फिलहाल इसके इस रूप में देखते हैं।

जीवन मिलता है, कितना मिलता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दिल में जो बातें हैं उन्हें बिना किसी देरी के इसी वक्त कह देना चाहिए जब आपके साथ मुलाकात होती है आपके अपनों की। जी हाँ, ये गीत जो अभी आप सुनेंगे ये प्यार में आगे बढ़ने का ही ऐसा एक संदेश दे रहा है। हरजाई फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर साहब और आशा जी की आवाज़ों में।

दोस्तों, मोहब्बत के दौरान जब एक दूसरे को चाहने वाले दिल लगी करने लगते हैं तो ऐसा तब होता है जब प्यार को महज खेल या मजाक समझा जाता है, जबकि सच्ची मोहब्बत एक गंभीर एहसास है। किसी के लिए इश्क बंदगी है तो किसी के लिए जिंदगी।

फिलहाल रूपा विदा लेती है हमराही कार्यक्रम से। आप जुड़े रहिए इसी तरह, आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को

थोड़ी सी देर की जुदाई भी बहुत लंबी लगने लगती है ना, जब अपनों का साथ थोड़ी देर के लिए भी छूट जाता है। तो ठीक इसी तरह हमारा भी हाल ऐसा ही है। उम्मीद है आप भी हमारे बिना उदास तो महसूस कर ही रहे होंगे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हुआ है 4:11:34। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। रूपा धवन आपके लिए लेकर आई है कार्यक्रम अरुणिमा। रुख बदल देती है हवाएं भी अक्सर अपना, रुख बदल देती हैं हवाएं भी अक्सर अपना, जब किसी के दिल में वफा का चराग जलता है।

जी हाँ, अभी आपने सुना पॉकेट मार फिल्म का ये गीत स्वर साम्राज्ञी लता जी की आवाज में। और दोस्तों, अरुणिमा में हम बातें कर रहे हैं आपसे कुछ ऐसी जो हमें दिल में प्रेरणा दे आगे बढ़ने की। जी हाँ अरुणिमा, अंधकार दुख भरा और उसको पार करने के लिए जो जिंदगी के पड़ावों को चीरती हुई जिंदगी को जीने की एक नई आस जगाने की रोशनी जो पहल करती है, उस अरुणिमा को हम अपना अभिवादन करते हैं। तेज हवाओं में भी जो मुस्कुराते हैं वही अपनी मंजिल को खूबसूरत बनाते हैं। ऐसा ही स्वभाव पतंग का होता है, वो कभी भी हवा के साथ बहकर ऊंचाई पर नहीं जाती बल्कि वो हवा के विपरीत टकराकर ऊपर उठती है। हवा का झोंका जितना तेज होता है पतंग उतनी ही मजबूती से आसमान छूती है। कितनी गहराई सिखाती है हमें एक छोटी सी कागज की बनी हुई पतंग जिसे हम पल भर में नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये पतंग जिंदगी का जीने का एक अलग ही नजरिया, एक अलग ही संदेश हमें देती है।

जीवन की मुश्किलें हमें काटने या गिराने की कोशिश करती हैं, पर जो इंसान अपने सिद्धांतों और साहस की डोर को मजबूत रखता है और विपरीत समय में भी सकारात्मक रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। क्योंकि देखिए ना, सुख और दुख हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इनसे हम चाहकर भी नहीं बच सकते। आज अगर सुख है तो दुख किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जरूर आएगा, और अगर आज दुख है तो सुख भी जल्दी ही आएगा। इसीलिए जब भी कोई ऐसा हालात आए या कोई ऐसी मुश्किलात आए तो हंसना कभी मत छोड़िए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:32 और 16 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। दोस्तों, जिस तरह से पतंग का अस्तित्व और खूबसूरती तभी दिखती है जब वो हवा से जूझती है, ठीक इसी तरह हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचने की खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक रास्ते में चुनौतियों का सामना ना हो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन की उड़ान को एक नई गति और खूबसूरती देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत किशोर साहब की आवाज में और आशा जी की आवाज में, झुमरू फिल्म से।

वास्तव में ये गीत सिर्फ गीत नहीं अनुभव है जो उस सुनहरे दौर में हमें वापस ले जाते हैं। साथियों कहते हैं कि सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, चुनौतियों से हारना ये नहीं हमारी पहचान। जी हाँ, माना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अक्सर चुनौतियों का सामना करके ही हम आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।

जी दोस्तों, जिंदगी को परिभाषित करना बेहद कठिन है, बेहद मुश्किल है, जिसे हम किताबी बातों से नहीं बल्कि जब हम वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ बेहतर समझ सकते हैं। जिंदगी के हर पहलू, सुख दुख, संघर्ष और आनंद को खुद जीकर अनुभव करना ही जिंदगी को समझना है। और इस जिंदगी के सफर में जब हमारे दुख सुख को बांटने वाला कोई अपना हो, कोई साझा करने वाला कोई अपना दोस्त हो, तो ये दुख बहुत ही कम लगने लगते हैं और इन समय के पड़ाव को हम आसानी से पार कह जाते हैं। खैर, निदा फाजले साहब का एक शेर याद आता है इस समय। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, अपनी दोस्त रूपा के साथ हैं और रूपा आपके साथ है अरुणिमा कार्यक्रम में।

जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि जीवन के जब मोड़ होते हैं ना, उस पर हमें किसी ना किसी ऐसे अपने की तलाश होती है जो हमारा दूर तक साथ दे। तो आपका साथ तो हम बनाए हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जो हमेशा जुड़ा हुआ है आपके साथ और आपका साथ हमेशा देता रहेगा आपके हर पल में, हर क्षण में। समय बहुत अमूल्य है। कभी कभी हम आने वाले कल की चिंता में आज के समय को भी खो देते हैं। तो भाई, इसे बेकार ही अपने हाथों से क्यों जाने दे भला। हर क्षण हर पल को भरपूर उत्साह और खुशी से जिए। किसी ने सच ही कहा है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, और पैरों तले रौंदी गई मिट्टी एक ना एक दिन मीनार बनती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इसी के साथ अरुणिमा से विदा लेती है रूपा। 5:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी कार्यक्रम में। तब तक के लिए विदा दीजिए। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर बल दिया। एआई के क्षेत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध और संघर्ष पर वैश्विक समुदाय से संयम, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूरदराज के देशों को भी इसका नुकसान होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए कल तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा भी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि अनुकूल मौसम होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, उड़ीसा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच शुरू होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। एक दिवसीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल

अंधियारे का आंचल छूटा, अंधियारे का आंचल छूटा, आसमान में सूरज रूठा। पूरब से एक लाली आई, नभ पर स्वर्णिम किरण सुहाई। पंछी गाए मीठे तराने, उड़ने को पंखों को ताने। आलस छोड़ा सब जग जाग, उठ बैठा सोया अनुराग। भोर सिखाती एक ही बात, फिर बीतेगी हर काली रात। नया उजाला नई उमंग, भर लो जीवन में नए रंग। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये समय है भोर सुहानी का। समय हुआ है 5:11 और लीजिए हो गए 12 सेकंड 12 मिनट और 3 सेकंड। आप हैं अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ भोर सुहानी में। आइए स्वागत करें इस भोर सुहानी का और नमन करें, आराधना करें उस ईश्वर की, जिसके नाम जपने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जिसके कई नाम हैं। पुकारा तो कई नामों से जाता है ऐसे, लेकिन वो सुनता सबकी है।

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला।